रात हर जुमेरात की शाम 9:30 से 10:30, जुमे की रात 11:30 से 12:30 और इतवार 9 बजे से 2 बजे तक सुन सकते हैं।

आप और हम वतन एक संग नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84। ईमेल रेडियो स्नैपलाई

0: किया जा सकता वो इंतहाई झूठे आदमी है और पाकिस्तान की तरफ से ये जो इन दोनों को अमेरिका और ईरान को एक मेज पर बैठाने के लिए सहूलत मुहैया की गई थी उसको जिस तरह से अगवा करने की और उस अगवा के पीछे जो अवामल कार फरमा थे उनका सारा गंध जो है वो ईरान पर डालने की जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं ये तसर देता है कि ये ईरान ही है जो ये बात नहीं मानता कि हम बात करेंगे। जैसा कि ट्रंप साहब ने कहा है कि हम 18 घंटे सफर करके वहां पर क्यों जाएंगे जबकि हमारे साथ पता ही नहीं है कि हमने क्या बात करनी है। अगर ईरान यही बात कहता कि मैं वहां पर क्यों जाऊं जब अमेरिका मेरी बात सुनने को तैयार भी नहीं तो फिर क्या होता। यानी सदर ट्रंप साहब इस हद तक आगे जा चुके हैं अपने तकबर में और अपनी अस्करी कुव्वत से और इसके अलावा ईरान के इर्द गिर्द मुत्तहिदा अरब रियासतें जो हैं वो और सऊदी अरब इनकी पुष्ट पनाही पर ट्रंप साहब इतने आगे जा चुके हैं कि उनको अब किसी चीज की परवाह नहीं है। उन्होंने आपने देखा है हर मुल्क को उन्होंने बंद कर रखा है
1: बिल्कुल
0: और यही अमल सिर्फ हम रूस आपने हर मुल्क को नहीं बल्कि उन्होंने ईरानी बंदरगाहों का भी मुआवजा कर रखा है।
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: यानी वहां पर ना कोई तेल लेने के लिए जा सकता है और ना ही ईरान के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त हो सकता है कि वो अपना तेल फरोख्त कर सके
1: और तेल के अलावा खाने पीने की चीजें और चीजें जो आ रही उनको भी उन्होंने रोक दिया है।
0: बिल्कुल ये नाकाबंदियां जो
1: जी हाँ बिल्कुल
0: पाकिस्तान का करदार जो है उसको जिस तरह से और क्यों सराहा जा रहा है इसकी भी कई वजूहत है लेकिन
1: कुछ लोग तो ये कह रहे हैं नसर साहब के पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से।
0: आप ने बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई। आप एक जहां जिदा आदमी हैं और आप मुख्तलिफ आलमी अमूर का तजिया करते हैं मैं अब शौकत के मुंह की निकली हुई बात आपके लिए इस्तेमाल करूंगा कि आप भी पाकिस्तान के मुताबिक इंसानी हमदर्दी और इस तरह के किरदार जो पाकिस्तान ड्रामे कर रहा है
1: जी
0: उस पर भी कभी लिखें और ठोक कर लिखें
1: जी।
0: ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है वहाँ होने वाली समाजी सियासी तब्दीलियाँ जो हैं उनसे हमारा ताल्लुक है और अब आपने जो कहा है कि अमरीका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है
1: जी।
0: बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने वो इसलिए कि दिखाई देता है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या जरूरत है कि हमारे कमांडर इन चीफ जो कि सदर पाकिस्तान है असल में लेकिन उनकी जगह पर ये हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जिनका काम फील्ड में होना है वो एयरपोर्ट पर जा रहे हैं किसी को लेने किसी को खुदाफज करने कभी वो सिविल सूट पहन लेते हैं और कभी ऐसे तगमे लगाए होते हैं सीने पर के मालूम नहीं कौन सी फतूहत इन्होंने की हुई तो ये इससे अजा होता है कि इक्तदार किसके हाथ में है
1: जी। अब तो मीडिया जो है इंटरनेशनल मीडिया भी साफ कह रहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो तो सिर्फ नाम के वज़ीर आज़म हैं सही जो वज़ीर आज़म हैं या जिनके पास जैसे अभी आपने कहा है कि जिनके हाथ में रियल पावर है वो तो जनरल साहब ही हैं।
0: उनके हाथ में सिर्फ रियल पावर नहीं है कभी आपने गौर किया है कि उनके हाथ में एक छड़ी भी है
1: वही पावर जी जी हाँ वो
0: ये हमारी बदकिस्मती है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: हमने अपने जमहूरी इदारों को एक तरफ बैठा कर हम चप रास करते हुए एयरपोर्ट पर चले जाते हैं और अपनी खिदमत पेश करते हैं क्या वजह है। चलिए आज हम बड़ा खूबसूरत दिन है मेरा भी कुछ शादी का दर्द ठीक हो रहा है आपसे गुफ्तगू करके मुझे ये बताइए जब से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में छोड़े कारी का किरदार शुरू किया है पाकिस्तान में वो दहशत गर्दी जो आए दिन 10-15 फौजी दहशत गर्द मारे जाते थे जिसमें 6-7 फौजी अफसरान मारे जाते थे जख्मी होते थे वो किधर गए वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं
1: वो रुक गई है
0: वो बिल्कुल गोया पाकिस्तानी फौज ने अपना दहशत गर्दी के खिलाफ मुल्क में जो मुख्तलिफ नामों से एक तो इन्होंने ऐसे अरबी नाम रखे हुए हैं मुकद्दस नाम कि वो समझ ही नहीं आती कि ये क्या हो रहा है
1: जी हाँ वो जनरल साहब जो है ना वो हाफिज कुरान है इसलिए वो अरबी नाम
0: कुरान होना तो अलग बात है यार इन चीजों से हट कर आप अपने कोई नाम रखें
1: जी जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल
0: और लोगों को

0: मस्जिद में जब उनकी नमाज जनाजा के अगले दिन आपने वहाँ पे जो तकरीर की है ना, नहीं बल्कि नमाज जनाजा वाले दिन जब आपने तकरीर की, जब मैं सुन रहा था वहाँ पे एक आपने एक बड़ी ख़ास बात की जिसका मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब हमारे कोई बुज़ुर्ग लोग या कोई भी अगर अस्पताल में होते हैं और वो वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हो रही है तो हमारे लोग कई दफ़ा बग़ैर बताए टाइम के वो वहाँ पे चले जाते हैं और एक नहीं जाता, बहुत से लोग जाते हैं। और इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अस्पताल के कुछ टाइमिंग्स होते हैं और वहाँ पे जो है लंबी लंबी बातें नहीं करनी चाहिए, जाके मजाज कुर्सी कर, लेकिन उसके लिए फैमिली से टेलीफोन पे बात करके फिर जाया जाए। तो ये आपने बड़ा अच्छी वहाँ पे बात,
1: बहुत शुक्रिया। और इसमें ज़रा मैं डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बाशी साहब जब हम इस प्रोसेस से गुज़र रहे थे तो देखें जो मरीज़ होता है उसको ज़्यादातर डिपेंड है कि आपको क्या है, ठीक है, और आपकी तबीयत जो है वो किस तरह की है। एक आदमी की अगर बाजू टूटी है, ठीक है, वो लेटे हुए हैं, वो बात कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, लेकिन उनको भी आराम की जो है वो ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना आप आराम करेंगे उतनी जल्दी आप जो है वो सेहतयाब होंगे। तो लेकिन एक आदमी को जो मुख्तलिफ यानी तरीके से जो अगर आप बीमार हैं तो आप ख़ुद भी, क्योंकि एक अंकल थे उन्होंने फ़ोन किया, कहते हैं रज़ा बेटा मैं आना चाहता हूं, तो मैंने कहा बाबा जी की तबीयत नहीं है ठीक तो आप नहीं आए, तो बाबा जी मेरे पास ही थे, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि अब्बा जी ये अंकल है आना चाहते हैं, तो उन्हें कहें कि मैं नहीं मिलना चाहता ना अभी, तो फिर वो इन्होंने इंसिस्ट किया, कहते हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे आप सिर्फ बता दें कि मैंने आना कहाँ है, तो वो फिर हमने उनको इनकार नहीं किया तो वो आए। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी कि हमें जो है ना, क्योंकि अगर मरीज़ ख़ुद कह रहा है कि मेरा मूड नहीं है, मेरी तबीयत नहीं है इस वक्त किसी से मिलने की, देन जस्ट लीव हिम। यानी हम सब मोहब्बत करते हैं अपने प्यारों से, लेकिन अगर हमारे उस प्यार की वजह से उनकी मज़ीद तबीयत ख़राब हो या खुदा ना खासा जान चली जाए तो वो भी जो है वो ठीक नहीं है। तो हमें ये थोड़ा सा जो है, लेकिन बाशी साहब इस पर जो हमें ना एक बड़े प्रोग्राम ख़ास करेंगे, और मैंने बल्कि हमारे जो उलमा हज़रात हैं उनसे भी कहा कि हमारी किताब और सुन्नत जो है वो क्या कहती है कि जब आप बीमार का पता करने जाएं फिर हम पूछना शुरू कर देते हैं कि जी आप बताएं कि आपको बीमारी क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ। या कुछ लोग होते हैं वो इन चीज़ों को पर्सनल रखना चाहते हैं, वो इस पर बात नहीं करना चाहते।
0: अच्छा रजा भाई, अभी हमारा दूसरा प्रोग्राम शुरू करेंगे, उससे पहले बाबा जी की रूह के लिए जो है ना आप दुआ कर दें प्लीज़।
1: जी तमाम सामीन और नाज़रीन से गुजारिश है कि आप एक मरतबा सूरत अल-फातिहा और तीन मरतबा कुलू शरीफ पढ़ के बाबा जी की रूह के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्होंने वो हमारे लिए भी जो है वो सदका जारिया बने, हम उनके लिए जो है वो सदका जारिया बने, जो उन्होंने हमें सबक देते रहे, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमें करके दिखाया, हमें भी अल्लाह ताला जो है वो तौफीक दे कि हम उनके नक्शे कदम पे चलें, ख़ास तौर पे हम जो उनकी औलाद हैं और हमारे जो बच्चे हैं, हम सब जो है उनके लिए एक फ़ख्र जो है वो बायस बने। लोग जो है जब भी बाबा जी का ज़िक्र हो तो वो हमें भी जो है अच्छे अल्फाज में जो है वो याद रखें।
0: आमीन।
1: जी तो सामीन नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चंद ही लम्हों के बाद जनाब बाशी कुरैशी अपना प्रोग्राम बाशी के संग लेके हाज़िर होंगे जनाब नसर मलिक साहब के साथ। आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984, ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम

0: वो हमेशा मियाँ बीवी को प्यार मोहब्बत से रहने का दर्द देते थे, तो मुझे भी कहने लगे, तो मिसेज लायला साथ खड़ी थी, मैंने उसके कंधे दबाने शुरू किए। मैं कहा बाबा जी तो इस फिक्र ना करो, मैं जन्नत बीवी की खिदमत करके प्या कमाना। तो उन्होंने नीचे मुंह का लिया और स्माइल सी ऐसे शरारती थी, कहें कि तन्नू मेरी नसीहत की लोड़ ही नहीं पाई, तू लगा रहा है, तू लगा रहा है।
1: अच्छा शमी भाई, अभी हम चलते हैं नसर भाई की तरफ, वो भी टेलीफोन पे मौजूद है। नसर भाई
2: जी, जनाब अस्सलाम वालेकुम।
1: जनाब शौकत भाई भी आ गए हैं, आप भी हमारे साथ हैं, तो आप से एक दो बातें हम पूछना चाहते हैं। बाबा जी की फौतगी के ताल्लुक से आप कई दफ़ा बाबा जी से मिले हैं, उनसे बातचीत भी हुई है, और आप जो है आपको बहुत सदमा हुआ है, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा जो है वो सदमा हुआ है। पहले ये बताइए हमारे सामईन और नाज़रीन को कि बाबा जी को आपने कैसे पाया, उनकी जब उनसे आप मिलते थे।
2: देखिए अब मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि बाबा जी से मेरा तारुफ कहाँ हुआ, कैसे हुआ
1: जी,
2: लेकिन एक बात जो मैं मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है वो ये है कि धर्मा रेड्डी से फारिग होने के बाद जब उन्होंने अपनी उर्दू की ब्रॉडकास्टिंग और सारी रेडियो की जुबानी की ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दी
1: जी,
2: तो मैं रेलवे स्टेशन के करीब से गुजरता हुआ वेस्ट दो में वो जो होता था मोर फूड स्टोर, उसके करीब से गुजर रहा था।
1: अच्छा,
2: तो मुझे इन्होंने आवाज दी और मुझे कहा इधर आ, इधर आ। ये दूसरी तरफ सड़क की दूसरी तरफ खड़े थे, तो मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे कहने लगे, पंजाबी ही में बोल रहे थे और वो भी कुठारी में, तू और कितने फिर जा रही मुंह चुप के की करना। मैं कह जी मैं करना की बस तुम्हें ठीक किया, मैं मुंह चुप के फिरदा रही घर च थोड़ा जहा कम कर लेना। कहने लगे कि साढ़े को जरा रेडियो है तू उसे क्यों नहीं आता। तो मैंने कहा हाजी साहब ये आपकी बहुत बड़ी नवाजिश है कि आप मुझे ये ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो जानते हैं कि मैं एक बहुत मुतनाज किस्म का आदमी हूँ, ख्वाब खा लोगों की नज़रों में रहता हूँ और लोग जो हैं वो इल्ज़ाम तराशी से बात नहीं आते
1: जी।
2: और मेरी वजह से कहीं आपकी शख्सियत मुतासर ना हो। बादशाह साहब यकीन करते हैं, मेरे कंधे पे हाथ रखते हैं, मुझे कहने लगे बात सुनो, जो तुमने कहना है वो तो तुमने कहना है, इस वजह से कि तुम मेरे साथ हो और तुम्हें तनकीद का निशाना बनाया जाएगा इसका मुदावा मैं कर लूँगा, तो तुम बताओ कि तुम कैसे आ सकते हो। खैर ये बात हो गई, मैंने कहा कि जब मौका मिला मैं आपसे रब्ता करूँगा। फिर मुझे याद है कि आपने मुझे कहा और बाबा जी से मैं दोबारा कहा, तो इस तरह से मैं इस रेडियो में आया। अब जो बात है कि मैं उन्हें कैसे पाऊँ, या उन्होंने रेडियो हम वतन पर मुझे कबूल करते हुए अपने लिए किन मुश्किल को गले लगा लिया। एक मतलब मुझे मिले, मुझे कहने लगे तेरे साथ एक बड़ी खास गल करनी है। मैंने कहा कि बताइए, तो कहने लगे कि फलां आदमी जो था उसने मुझे ये कहा है तुम्हारे लिए, मुझे किसी और ने बताया। मैंने कहा कि लोग कहते रहते हैं, मैंने तो आपको शुरू में कहा था। तो कहने लगे कि नहीं, तेनू उन्होंने सिर्फ गल दसना, जिस आदमी ने तुम्हारे मुताबिक ये बात की किसी एक और आदमी के साथ, उस और आदमी ने मुझे बताया है। यानी मुझे बराह रास्त ये बात नहीं मिली, मुझे किसी के तवस्से से बात मिली है और मैं बुरे के घर तक हो आया। मैं ये सब के हैरान भी हुआ, मैंने कहा आप हम वहां लोगों से लड़ाइयां ले रहे हो। कहते कि नहीं, मुझे घर तक जाना जरूरी थी। मैंने कहा मुझे तो इस बात का कोई पता नहीं है। कहने के बहुत अच्छी बात है, तुम अपने दिल साफ रखते जिस तरह प्रोग्राम पेश करते हो बाकी के साथ, तुम हमेशा लगे रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं दिखाएगा। फिर आपको याद होगा कि एक मरतबा उन्होंने आपकी मौजूदगी में मुझे खास मौका दिया कि कुछ तकरीबन 15-20 मिनट की खबरें जो थी वो मैंने बराह रास्त बैठ कर वहां से नशर की।
1: बिल्कुल जी, जी, जी।
2: और बाबा जी की एक और शख्सियत मैं आपको बताऊं
1: जी,
2: आपने जिक्र किया जिस साने से मैं गुजर रहा हूँ, जब भी रजा भाई से बात होती थी तो चूंकि घर में बात हो रही होती थी तो मैं कहता था रजा भाई बात सुने या रजा गल सुने, तो मेरी आइडिया जो थी वो कहती थी ये रजा भाई हैं। मैंने कहा हाँ, तो वो कहती थी इनसे ये कहो कि बाबा जी से कहो, उसका भी कहो कि बाबा जी से कहे मेरे लिए दुआ कर,

0: ये मसला
1: नहीं, मैं यहाँ की बातें कर रहा हूँ, इंडिया में, इंडिया में ये दिन मनाए गए,
0: लेकिन वहाँ देखें
1: फतह का दिन,
0: लेकिन मनाए जाते हैं लेकिन सियासी क़यादत के नीचे रह के।
1: हाँ, वहाँ तो सिस्टम ही हो रहा है, वहाँ आर्मी जो है वो जो हुकूमत के अंडर है, और यहाँ पे हुकूमत आर्मी के अंडर है।
0: और वहाँ ये भी बात कि हमें इस मार्के के शहदा से या पाकिस्तान ने जितनी जंगें लड़ी हैं, ये बात भी मैंने वहाँ दोहरा दी थी कि हमारे हमारी उन शहदा की कुर्बानियों की तहे दिल से एहतराम है, हम इज्जत करते हैं कि जो शहीद की मौत होती है वो कौम की हयात होती है। हमें उन शहदा के किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, हम उनका दिल से एहतराम करते हैं। एतराज़ सिर्फ इस पे है कि आप आइनी हदूद के अंदर रहें और आप सिर्फ वो फ़र्ज सर अंजाम दें जो आपको आइन ने सौंपा है और दफाए पाकिस्तान है। और आप एक पॉलिटिकल चाहे मौजूदा से हम ये भी मैं ये भी कहूँगा कि मौजूदा जो सियासी क़यादत है जो हुकूमत में है उनकी एक अहमियत हो, उनकी हालात पे ग्रिप हो, वो खुद फैसले करने में आज़ाद खुद मुख्तार हों, हम ये चाहते हैं।
1: अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि अगर मार्का हक अम्बेसी ने मनाना था तो, और ये तो सब पाकिस्तानियों के लिए है क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो सब पाकिस्तानियों की है, हमारी मोहब्बत उनसे है, तो क्या ये अच्छी बात नहीं थी कि अम्बेसी जो है वो ख़ुद ये दिन मनाती और उसमें सारे पाकिस्तानियों के लिए एक ओपन तकरीब।
0: बाशी साहब, आपने ये बड़ा सवाल उठाया, ये मैंने रज़ा को ना फेसबुक पे एक चीज़ मेंशन की थी क्योंकि रज़ा ने ये दोनों पोस्टें जो थी फेसबुक पे शेयर की थी। मैंने रज़ा से कहा था, रज़ा इनका टाइम फ्रेम देखो ज़रा, इनकी जो शेयर की जा रही हैं, ये जो नून लीग के कार्य हैं इन्होंने 24 घंटे पहले अनाउंस कर दिया था और अगले दिन सात घंटे पहले अम्बेसी ने किया। मैंने कहा रज़ा ये किस तरह हो सकता है कि अगर ये फंक्शन अम्बेसी का है और उसकी अनाउंसमेंट 24 घंटे पहले ये वाले कम्युनिटी कर रही है कि हम जी वहाँ कारों का रैली लेके जाएंगे। मैं क्या अगर मैं अम्बेसडर हूँ,
1: तो जगह भी नहीं, देखे वो छोटी सी सड़क
0: नहीं, वो उसको छोड़े, मैं जो तो पॉइंट कहने लगूँ, अगर मैं अम्बेसडर हूँ और मैंने एक फंक्शन अरेंज किया हुआ है और मुझ में ज़रा भी सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मैं इन सबको बुला लूँ उधर कि फंक्शन हम कर रहे हैं तो सबसे पहले अनाउंस करना हमारा बनता था और आप लोगों ने 24 घंटे हमसे पहले ऐसे अनाउंस कर दिया जैसे ये फंक्शन आप कर रही हैं।
1: क्योंकि जो अम्बेसी की एडवर्टाइजमेंट है उसमें जो सिर्फ अम्बेसी उसमें लिखा हुआ है कि सब पाकिस्तानियों के लिए है, लेकिन जो ये जो है पोस्टर है इसमें सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है उन्होंने इन्वाइट, इसका मकसद ये है कि वो सब पाकिस्तानियों के लिए नहीं है।
0: इस पे भी अम्बेसी को इतराज़ करना चाहिए था कि आप एक किस्म का इस फंक्शन को सबोताश कर रहे हैं, लोगों को ये
1: ताज़ा जाएगा,
0: हाँ हाई जैक कर रहे हैं इसको कि इसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लोगों में तकसीम पैदा होगी पीछे जाए कि वो यकजहती से इस दिन को मनाएं। तो बिल्कुल जी, अपनी मुल्की अफवाज के इस किरदार से, मुल्की दफा से किसी को इनकार नहीं है, ये दिन मनाना चाहिए उन शहदा की याद में, उन गाजियों की याद में जिन्होंने बहादुरी से वतन अजीज का दिफा किया।
1: चलिए, अभी वो खाना खा रहे हैं, अभी तो
0: चलें
1: जो बज रहे हैं तो उनको खाना खा रहे
0: हैं। ये भी देख लें बाशी साहब, हम वहाँ अपनी मर्जी पे जो गए थे कोई खाना नहीं, धूप में खड़े हैं, उनकी तादाद यकीनन इनसे ज्यादा।
1: बिरयानी नहीं दी?
0: नहीं नहीं, कोई बिरयानी नहीं दी, यहाँ पे जो भी आए अपनी खलूस के साथ, अपनी नीयत के साथ आए।
1: चलिए, तो सामईन और नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। जो पूरा प्रोग्राम है वो तो ख़ास तौर पे हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब बाबा जी की ज़िंदगी के बारे में, उनका अखलाक, उनकी जो है यादें हमने ताज़ा की हैं। मोस्टली लोगों ने टेलीफोन करके अपने ज़ाती तसरात जो हैं उसका जिक्र किया है, और हम आखिर में सिर्फ यही कह सकते हैं कि बाबा जी आप जहाँ भी हैं खुश रहें और हम आपको हमारे दिल में आप हमेशा रहेंगे और हम आपकी जो है आपके लिए दुआ को हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम रज़ा, तो अभी 2 बज गए हैं, तो आज हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। तो अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान
0: जिंदाबाद,
1: डेनमार्क पाइंदाबाद, और हाजी जी है उनकी रूह को सवाब हो।
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल radio@snipelay.com।